0: 碧玺、卡蓝宝石、石榴石。
1: 我超爱碧玺，
2: 我也是。
3: 450克。
4: 在塔什库尔干塔吉克自治县这座边境小城，这家巴基斯坦人开的老牌玉石店几乎无人不知。
1: 93年开的，
0: 对对，这
1: 开了这么多年啊。
0: 这是我爸爸和叔叔开的店。
1: 哦，你是二代。
0: 对。
5: The main thing my father and uncle told us, never ever tell lie to the customer. The second thing, never ever be angry, be sweet.
4: 这是艾明接班的第14年，他将父辈的生意经营成了塔县最大、口碑最好的玉石店。而今年，艾明有了一些新打算。
5: A lot of tourists come here. 有没有吃的东西 ？To drink from Pakistan, and we are just so we decided to have some food products in our shop. And this is the main thing which I want to do this year.
4: 扩大经营范围并非易事。艾明打算去喀什拜访一位塔吉克族老友，听听他的看法。
5: Oh, so missed you so much.
6: I miss you so much also.
5: Okay.
6: When are you back to Tashkogan?
5: Maybe tomorrow. How is your jade business now?
6: I also tried to go to Pakistan and see what's going on here.
5: Okay.
6: Emerald or ruby mine.
5: Okay, that's great. So, I can help you out in it.
6: We want a top quality.
4: Like, it's very good quality. 既是挚友，又是合作伙伴。
6: How's your side?
5: I want to bring this juice to China.
6: So you're checking the market or not?
5: Yes, I am checking a little.
6: Just my one friend has come from India, China, about this.
5: Okay, that's great.
6: Juice.
5: I will get some samples、
6: yeah.
5: from Pakistan. In it, we can find a buyer. We can work on it.
6: Bhatish.
5: Bhatish.
4: 好友的鼓励下，甄选样品成了推进计划的第一步。艾明与弟弟平日住在店铺的二层，他不在时，弟弟则自动升级为临时店长。踏上亲自回乡选品的旅途前，先跟当地老铁打个招呼。老家孩子们最爱的糖果也不能忘。从塔什库尔干出发，乘坐国际大巴，穿越世界上海拔最高的国门红旗拉甫。沿着帕米尔高原的褶皱一路蜿蜒，四五个小时即可抵达艾明的故乡，一个巴基斯坦北部山区的宁静村庄。
5: 你还没哭呀？这个哎，哇，其实都比多大哎。那么你把伊拉沃什么放那当？都 take there。我是阿曼，我是杰卡。
4: 炉火边的团聚短暂珍贵。虽然叔叔退休多年，但老江湖的眼光犀利精准，一句点拨让艾明锚定了芒果汁。
6: 93 Volgobat Gar.
0: باف یا خسارن دلمان وقتی یا خسارن تی سکول جانی شبا فست اکا
2: سکول
0: سمومنگ پولتو وای سکول سمومنگ پولتو آ ای او یا تو چون رو بفت تو بکرتا نی سمومنگ
2: گوختا
0: گوختا
2: تا کن خوی سرطو اندی دخوشت
0: مزای تور دیتا کا یا
2: مزای
0: دیتی آو بتا تین سرکا چون رو خشروی یا ای که تو کلوب فی تویز شا جاناش وی زنه ای؟
2: نه
0: نه بس حالی خانه یا بکر وید نه بافی که باف دو سایکل دو سکویز یا نه
4: 这是罕萨山谷里最热闹的巴扎，各式果汁批发商在此聚集。
5: We check it. How is the taste? How is the quality of the product?
4: 亲自品尝、挑选最佳风味是第一步。
5: The food is more difficult than the songs. Chinese would like this.
0: कैसे हैं भाई? ये इसकी क्या प्राइस है मेरे भाई?
3: 300.
0: कुछ कर लें, कुछ दे देख लें, थोड़ा सा कोई हो सकता है अगर हम आपसे.
4: 讨价还价，控制成本是第二步。
5: I am nervous.Because it's not a small business.
0: थोड़ा महंगा बता रहे हैं
7: इसमें कम से कम ना करें
0: यार देखना बस उसी उस पे उसी चीज पे लगे हुए हैं थोड़ा सा कम कर दें
7: उसका वो खरीद ही नहीं है रिटेल
0: में देखा ना इसमें कम करें ये मेरे ख्याल में 3,900 जो है ना
7: नो प्रॉफिट नो लॉस आपके साथ
0: थैंक यू
7: अल्लाह
0: का शुक्रिया बहुत शुक्रिया ओके बहुत खुशी हुई आपसे काम करने का इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा काम करेंगे
8: इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें भी खुशी हुई
0: प्लीज भेज
4: 与供货商的合作协议顺利签署
5: agreement of supplier and
4: 两箱芒果汁的样品摆上爱民的柜台帕米尔高原的风可以抚去连日奔波的疲惫。
5: It's on the roof of the world. I like photography. You can see different signs of clouds.

0: Ναι, το δείτε καλά.
1: Για να τα δείτε.
0: Α, ο πιτατένς αρέκα τσούμρ χρούια.
1: Ας μπίγω μάω και ναι.
0: Έκα το κυλούπ φύτου έτσι σαν να σου φύζα, ναι.
1: Ναι,
0: ναι. Τους άλλη κανένα για μου καρουέδα. Α,
2: We check it. How is the taste? How is the quality of the product?
3: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
2: The food is more difficult than the songs. Chinese would like this.
0: कैसे हैं भाई ये इसके क्या प्राइस है मेरे भाई कुछ कर लें कुछ दे देख लें थोड़ा सा कोई हो सकता है अगर हम आपसे
3: 讨价还价控制成本是第二步
2: I am nervous because it's not a small business
0: थोड़ा महंगा बता रहे हैं कम से कम ना करें यार देखना बस उसी चीज पे लगे हुए हैं थोड़ा सा कम कर लें
4: उसका वो खरीद
0: ही नहीं है रिटर्न देखा ना इसमें कम करें ये मेरे ख्याल में 3,900 जो है ना
4: नो प्रॉफिट नो लॉस आपके साथ
0: थैंक यू
4: अल्लाह हाफिज़
0: बहुत शुक्रिया मेरे पे ओके बहुत खुशी हुई आपसे काम करने का इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा काम करेंगे
5: इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें भी खुशी हुई
0: प्लीज भेज
3: 与供货商的合作协议顺利签署
2: Agreement of supplier and then.
3: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
6: Okay.
3: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
2: It's on the roof of the world. I like photography. You can see different signs of clouds. You can see the big mountains. You can see the greenery, the cool breeze. It makes you feel relaxed inwardly. Because in this beautiful nature, no, I don't worry about anything. I don't feel like that I am far away from my home.I feel like my home here in Tashkurwan.
7: I'll take 2 glasses
0: of this. Okay, you can
4: try it. Oh, it's good.
3: It's mango tea. Mango tea is quite popular. Yes.
8: This is my country, Pakistan. China is good, but it's not good.
3: This...当暮色降临，塔西的夜市变肃静了。巴基斯坦商贩在此云集，琳琅商品在灯火中流转。当然，这里也少不了艾明的摊位。他的商业拓展延续着父辈30多年前开启的跨文化纽带。
2: The road, which is Silk Road, our Karakoram Highway, which was built in 1960s.With the help of Chinese and now becoming CPEC. I will say that my father and my uncle are ambassador of CPEC. Think about this 3 years before the future of cross-border trading in Sweden. I want to bring more beautiful things from Pakistan to Xinjiang in the future.
3: 艾明的家族见证了这条古老商路的时代变迁，而1650公里以外，一位新的探索者的故事才刚刚开始。
9: Why did you not do your homework? So remember, when we want to say we go somewhere.
3: 英语教师这份大众点评上淘来的工作，是陆可落脚新疆的敲门砖。
9: Pick someone from the class.
3: 初来乍到几个月，这位英国小伙在讲台上是学生们口中的 Mr. Luke。
9: Okay, now repeat after me.